चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै तुजी।

संतो जी सब दुख विसारण हारा, हरे आपे ठाकर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा।

ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझ हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी।

कह बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कहे भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहो रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा, सगरी

ब्रह्मत रह एक शब्द त्रिवलाहे नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरे जो हर हृदय सदा वसाए ब्रह्म बिंद तिसदा ब्रह्मत रह एक शब्द लिव लाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरे जो हर हृदय सदा वसाए बिन सदगुर नाओ ना पाइए बुझो कर विचार नानक पूरे भाग सतगुर मिले

नानक मन परगासु। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समिगरी एकस कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाए। नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तह नाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहया भगवंत। धरन माहे आकाश पयाल, सर्ब लोक पूरण प्रतपाल। बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आग्या तैसा कर्म। पौन पानी बै संतर माहे, चार कुंट दै दिसे समाए। तिस ते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोल न कब हों डोले। सर्ब कला करके लै खेल, मोल ना पाइय गुण है अमोल। सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत, तार रहे ओ स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं इहो बिसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे विस्थार, तिस भावै ता एकंकार। अनक कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्ब भूत आप वरतारा, सर्ब नैन आप पेखन हारा। सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कै मध अलिप तो रह, जो किश कहना सो आपे कह। आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै तां लए समाए। इस ते होए सुना ही बुरा, पूरा कहो किने कश करा। आप भला करतूत अत नेकी, आपे जानै अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच। ताकि गतमित कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का इह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। सलोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरह गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित त्यागह तरंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अगन सागर तरहो। हर तन के भर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित वह नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक।
ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧਕੇ ਬਚਨ ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੋ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ

जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरहे तिन कै साथे। सरन जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भये सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न पहे गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल विकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहु संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुख मने सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। सर्ब इच्छा ताकी

सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जमते छुटाए जाकै मस्तक

कर जाहि। असंख्य कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख्य मलेश मल पखाहे, असंख्य निंदक सिर करह भार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार हुए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलन बाणु, अखरा सिर संजोग वखाणु, जिन इह लिखे तिस सिर नाहि, जे फरमाए तिव ते पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हथ पैर तन देहे, पानी धोते उतर सुखेहे, मूत पलीती कपड़ हुए, दे साबून लइए ओ धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओ तो पहनावै कै रंग, उन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहु, आपे बीज आपे ही खाहु, नानक हुक्मी आव जाहु, तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनया मनया मन कीता पाहु, अंतरगत तीर्थ मल नाहु, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिरुति माहु।

दातार। बंद खलासी भाणै होए, हो राख न सकै कोए। जे को खाए के आखण पाए, ओह जाने जितिया मुहि खाए। आपे जाने आपे दे, आखै से पे के जिसनु बख्शे शिव सालाहा। नानक पातशाही पातशाहो, अमुल गुण मुल वापार। अमुल वापारी अमुल भंडार, अमुल आवह अमुल लै जाहे। अमुल भाई अमुला सुमाहे, अमुल धर्म अमुल दीवान। अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान। अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो मुला क्या न जाए। आख आख रहे लिवलाए, आख वेद पाठ पुराण। आख पढ़े करह वकयान,

पीतै गोविंद अकहै ईश्वरी अकहै सिद्ध अकहै किते किते बुद्ध अकहै दानव अकहै देव अकहै सुर नर मुंजन सेव किते अकहै अकन पाहि किते कह कह उचुट जाहि ते किते होर करे ताक न सकै केई के जीवड़ भावै।

मंसूर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टे संसार जिस हाथ जोर कर वे कैसोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवार नदरी करम पवै निशान कच पकाई उत्थै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वैसंतर केते कान महेश केते बरमे काढ़त घड़िय है रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते

ਮੁਕੇ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੇ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਚੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਥੋਜ ਕਹੀ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੀ ਸਾਹਾਨ ਗਨੀਜੈ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਤਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਵੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਮੇ ਨਮਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ ਨਮਸਤੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤਵੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਚੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਝੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਵਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੌਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਤੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤੇ ਸਮਸਤੀ ਬੇਪੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ
नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणि नमो वस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमातापेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेते वेषु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सा सांग नमो फूफूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदन सर्वं प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद कर्ता अदो उर्द अर्दं अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेती अपेती अनामंग कामं समस्तोपराची समस्तस्ततामं तेरा जोर्चा चरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाध्ये अबाध्ये अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अकिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासी चर्पटचन्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल चंतो प्रसाद आद रूपनाद मूरत जौन पुरख पार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र चतर विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत जौन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा होय फैलो अनुराग नाम काम हीन पेखत ताम हूँ नह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदय मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक दे पेव न जाने जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पास हो जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के विखय जग जापी जे जाप आद देवन आद मूरत थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो सोयम भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत अभूत लख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुख दाय काम आप रूप अमी का नुस्त तेक पुरखूत गर्भ गंजन सर पंजन आद रूप सूत अंग हीन अपंग नाथ में पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग अरेक परम वेद पुराण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार मह माया पार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपौ प्रकाश निश्चिन अनाश आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आबा अपंग गत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपह निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड
आलस्य कर्म आदर्श धर्म सर्वापरना डे अंडन बाडे चाचरी चंतव प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे पुजं प्रयाचंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्रै न मित्रै न परमंग न पित्रै न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै प्रथिसै अधिसै अदृश्य कृश्य भगवती चंद्व प्रसाद कथते क्या चिज देश है क्या भिज पिश है क्या गंज कर्म है क्या भंज भरम है क्या भिज लुक है क्या दित सुख है के अवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के वर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अदेव है के आप अपीव है के चित्रंग बहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गैब उल गैब है के अफुल गुना है के साहन सा है के कारण पुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र ताप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहिम है के अकल अलम है के साहिब कलाम है के हुस्नल वजू है तुमामुल रजू है हमेशुल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाम्य त्रिवर्गं त्रिवाद्ये अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्व अनुरागे त्रिपुवत स्वरूप है अचिज है अछूत है के नरकं प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है भूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलिख है अपेक है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है आजात है आजाद है चरपट चंत्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म प्रमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाम्य निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकुं सरी कह अमितु अमी कह सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छन्त्व प्रसाद इजाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हम ईश्वर सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्नल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकिंग परनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है कि नरकिंग प्रणाश है बहसुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशुल रवन है तमाम उल्तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदीशुल अलीख है हमेशुल अफीक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मत पार चंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड वन पव अनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल तल मुदाम अंशिज अंग आसन भंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिशविश अपंड जल थल महंत दिशविश बेअंत अनुभव अनास त्रितर तुरास आजन बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है तृत के तरण है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है तपा थप है कृता कृत है मृता मृत है मृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है मितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है मृता मृत है अजबा कृत है मृता मृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वम्पर है कुरुणालय है निर्भनायक है सर्पायक है पवभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी चांद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अकंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथि प्रमाथि अजो नियमो निनरागि नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनिमे हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते सुवयं पव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दो

पार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को फल मुँह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सिर सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक कै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज कान बाहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवे बैठा, कहूँ सिमट भय शंकर कैठा। सिदरी सेठ दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रच्छा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाहे निहरे हो, ताके ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट चाच वसकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास तेता है उबारा। जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा। कड़के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। किल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखिन को छह करता। श्री अस्तु जप है दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई। सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भौ निकट न तिन नर के रहे। हो जो या की एक बार, चौपाई को कहे चौपाई। संबत सत्रह सहस पनि जय, अर्ध सहस पुन तीन कही जय।

ना ही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा हो, जिस दिया ही वडियाइया। कह नानक सुनो संतो हो, सब धर्म प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू, वाजे पंच सब तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजी, कला जित कर धारिया, पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे, कह नानक तै सुख हुआ, तित करे अनहद वाजी।

जानिया आनंद सुधा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवि कटे ज्ञान अंजन सारिया अंद्रह जिनका मुह टुटा तिनका शब्द सच्चै सो आरिया कह नानके आनंद है आनंद गुरते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिर है दा दिशक नाम लाग सो आरिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारे हो कथ की करह कहानी करह कहानी कथ केरी कित द्वारे पाइय तन मन धन सब सौप गुरु को हुक्म ने पाइय हुक्म ने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी हे मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिने तु भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाइया कुर्बान कीता तिसै विटहु जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाई है ऐसा कामूले न कीचै जितंत पछुताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले अगम

नदर कर्म हुवै हृदय तिन्हा सुमानी। पीवहु अमृत सदा रहहु हर रंग जपहु सारंग पाणी। कह नानक सदा गावहु ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहु होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी। चित जिन का हिर लिया माया बोलन पैर वाणी। कह नानक सतगुरु बाजहु होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊ। शब्द रतन जित मन लागा एहु हुआ समाऊ। शब्द सेती मन मिलया सच्चा लाया पाऊ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ। शिव सकता पो पाए कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए वेखै गुरम किसे बुझाए। तोड़े बंधन हुवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु वाप करे सो हुवे एक स्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी गुरु बाजहो तत्तै सार न जानी। तेहि गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागै जागत रहन विहानी।

आई कह क्या तुझ कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुझ शरी राजा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक यो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुरु स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम है ज्योत तरी। हर बिन वरना देखो कोई, हर बिन वरना देखो कोई। नदरी हर निहालिया, एहो वे संसार तुम देख दे। वर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा, हर एक है हर बिन वरना कोई। कह नानक नेत्र अंध से, सतगुर मिलया दिव दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचै सुनने नो पठाए। साचै सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनहु सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी। सचल कविडानी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र हो। साचै सुनने नो पठाए, हर जियो गुफांदर रख कै। वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पौन। नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनीक, न दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नव नव निध, तिस दांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे, जियो गुफांदर रख कै। वाजा पवन बजाया, एहु साचा सोहिला। साचै कर गावहु, गावहु ता सोहिला कर साचै। जिथै सुधा सच त्यावहे, सचो त्यावहे जात दुपावहे। गुरमुख जिना बुझावहे, एहु सत सभना का खसम है। जिस बख्शे सो जन पावहे, कह नानक सच सोहिला। साचै कर गावहे, आनंद

सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करणे सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुदा खैलक करोड़, सच्चे सप्तान, सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, नानक सच तहन सच, जो मर जमे सो कच निकच महला पहला।

0: खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन लावे किछ खाई न पाई रह बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाने पछताणी
1: सतगुर बेटे सो सुख पाए घर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सपाए आस अंधे से तेने केवल हो मैं शब्द जुलाई पौड़ी पग तेरे मन पाउंदी।

0: ऊंचे को कहवा दांगा वह जोधा का विचार, मूर्ख पंडित इकमत हुज्जत संजय कर प्यार, धर्मी धर्म करेगा वह वह मंगे मोख द्वार, जति सदा वह जुक्त न जाने छड बह कर बार, सबको पूरा पे हो वह घट न कोई अख, पत परवाना पिछे पाइये ता नानक को लिया जप महला पहला।
1: जगनान का सच्चा विख सोए, सब निशाला मारियां करता करे सोए, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिन किले के पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जना को तुत पाया।

अर्पस्तक संध्यावादं शिलपूज सुगल समाधं मुचूट विभुखण सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गलमाला तिलक लाटंग दो तोते वस्त्र पाटंग जय जानस ब्रह्मंग कर्मंग सब हो कुट निश्चो कर्मंग कौ नानक ने चो त्यावै बिन सतगुर बाट न पावे पड़ी

कार्योग ग्रुप की साजनी वाजी परम प्यारी सत्संग जोड़ पागे हो जे अमृत प्रदी हाजरी पड़ते हुए पावन पवित्र आसा की वाजा कीर्तन जन शरदा भावना दे नाल सरवण कीता है हुण अति सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी कनेडा वाले तना पासों पावन पवित्र मुखवाप की कथा सरवण करिए जी बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु वाह

आई हमरा परम गया पाओ भागा जब राम नाम चित लागा रहाओ बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमासे आई बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला कथनी कह परम न जाई सब कथ कथ रही लुकाई जाको गुरमुख आप बुझाई ताके हृदय रहा समाई गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन देहे हर लीनी।

अब क्या कथी है ज्ञाना, अब क्या कथी है ज्ञान विचारा, निज निरखत गत व्यवहारा, रहाओ कास कुंकम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जन दाता पाया, सो दिया न जाई खाया, छोड़िया

मानिया तौ मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तौ क्या कीजे। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलो वसपानी। काया मांजस कौन गुना, जौ घट पीतर है मलना। रहाओ लौकी अठसठ तीरथ नाई, कौरापन तौ न जाई।

किछ जोग प्राप्त गनिया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुम

देवा, जह चिल मिल कार दिसंता, तह अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार भी जल तही, नेरे नाही दूर।

मिल पारस कंचन होया, मुख मनसा रतन परोया, निज भाऊ भया भ्रम भागा, गुर पूछे मन पतियागा, जल भीतर कुंभ

अब कछ मर्म जनाया, अनिक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भुग वै सोई, कह रविदास हाथ पै नीरै, सहजे हुए सोई।

खंड खंड कर पूजन कीनो, तौ न बिसर्यो पानी, आपन बापै नाही किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जग।

भगत भीखण की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नैनो नीर बह तन खीना भय केस तुदवानी रूदा कंठ

ऐसी बेदन उपज खरी पई, वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एह औखद जग सारा। गुर प्रसाद कह जन भीखन,

अनिक जतन कर हृदय रखिया, रतन न छपै छपाया, हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई रहाओ, रसना रमत सुनत सुख श्रवणा, चित चेते सुख हुई।

चोर सियाणा, खोटे का मुल एक दुगाना, जे साथ रखिए दीजे रलाई, जा पर खिए खोटा हो जाए, जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीज आपे ही खावे, जे वडियाईया आपे खाए, जे ही सुरत ते है राह पाए, जे सौ कूड़िया कूड़ कबाड़, भावे सब

पावै, बिन सतगुर सब मुई बिल लाई, अन दिन दाज है शांत न पाए। सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाई, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाली, जी जंत जिन्हें प्रतपाले, मुक्त पदार्थ

जोगन्ति परसोगन्ति जल जोगन्ति बहुपात चार सत्वर मेरा सदा दयालु मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महासुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण की तिहन जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रभु के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रभु की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस महानुप्रभु के चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल उदित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण प्रिय सत्कारियो ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासो अज दे जिहड़े हम चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण प्रिय गुरु इतिहासिक इतिहास सरुण प्रिय दासलो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कि ऐसे राग हैं जिन्हां नूं गा के सुन के जिन्हां दे अंदर राग दा बीज है एक मस्ती छा जाती है, क्योंकि राग परमेश्वर नाल मिलाप करता है। इतिहास है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कोई समाधि नहीं लाई, कोई तपस्या नहीं की थी। सतगुरु जी आप वचन करते हैं, मैं रब नूं गा के पाया है। बड़ा ईजी तरीका रागा में कोई राग गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने लैके आए। जदों संसार बनया है गुरबाणी भी सी राग भी सी, लेकिन बाणी नूं रागा में किसी ने नहीं सिखाया। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बख्शिश की रागा दी और रागा में गा के वो परमेश्वर जरा है। हालांकि आप नारायण है, वो कलाकार जगमह पर रहे हो, लेकिन याद इतिहास करता है गुरु नानक सच्चे पातशाह जो गाँवे सन भाई मरदाना साहब रबाब का साथ देते सन, तो सारा कुछ ठहर जाता है, रुक जाता है। ऐसी आवाज रस वाली और ऐसा कीर्तन, और ये भी वही रीता है, कोई असी नहीं क्या सीना पसीना चली आई हैं सैकड़े साल पुरानी। जिवें गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का शब्द है, रे मन कौन गत हुए है तेरी। सतगुरु सच्चे पातशाह ने आप गायन की है, और जो बिहागड़े भी गायन की है वो भी सच्चे पातशाह ने आप कृपा की है। सारे गुरु साहब गुरु जन उस्ताद कहते सन, मत समझना कि असी बनाइया रीता, मैं अपने गुरु कोलों करद्या ये गुरु साहब तक कड़ी पहुंचती है कि वो रीता। सो आओ कुछ मिनट का समा लवेंगे आप जी का।

तहीं प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जो नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तो आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा ना ही दूर। जो इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग की यात्रा करया करदे सन, तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना किया। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदी। ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकड़ पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार। साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आक दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई, साडे धर्म दे लई
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।